हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों, और इट हैपेंस के साथ हमारा आपके साथ जो प्यार है, जो इस प्यार की गहराई है वो और भी आगे चल रही है। देखिए चैलेंजेस जो हैं वो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब चैलेंज नहीं होंगे तो आपकी लाइफ बोरिंग से नहीं हो जाएगी। हाँ, इसीलिए आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है आपकी लाइफ में, और लाइफ में आपको बोर नहीं होने देता है। एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है और आप यही सोचते रहते हैं कि भाई इस चैलेंज को हम कोप कैसे करें। लेकिन उस चैलेंज से निकलना, भाई इसकी भी एक खासियत है, ये आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। क्योंकि हर चैलेंज से जब आप ओवरकम करते हैं तो बेसिकली आप एक नए जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ओवरकम करते हैं, एक नए एक्सपीरियंस को आप लेकर लाइफ में चलते हैं, उसको एडअप करते हैं, है ना। तो चलिए बस इसी बात पर कि हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे, इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस, और एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस में कई खूबसूरत और बेहतरीन गाने। सो कैसी है ये मॉर्निंग भाई आप सबके लिए, कैसी है ये सुबह और कैसी गुजर रही है? वैसे सुबह की तैयारी तो अच्छे से की होगी ना आपने? जहाँ अच्छे से मतलब भाई, जब तक मॉर्निंग की तैयारी बेस्ट ना हो उस मॉर्निंग का मजा ही नहीं आता है ना। और बेस्ट तैयारी कैसे होती है कि हम सुबह सुबह अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, है ना। देखिए सुबह की शुरुआत अगर खुद को फिट रखने से होती है तो यकीनन आप लाइफ के लिए पॉजिटिव होते हैं। लाइफ में कौन बंदा पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये आप उसके फिटनेस एक्सपीरियंस को देखकर जान सकते हैं। जो बंदा लाइफ को लेकर आशावादी है, पॉजिटिव है, वो हमेशा अपनी फिटनेस का ख्याल रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया शरीर है तो सब कुछ है। और जो अपनी डेली रूटीन को लेकर भी नेगेटिव ही सोचता है वो बंदा कभी भी अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान नहीं देगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा और वो उसको लगेगा कि भाई आज जी लिए तो जी लिए, कल की कल देखेंगे, या वो बाकी लोगों पर डिपेंड रहेगा कि बीमार हो गए तो इतने लोग हैं तो, है ना। तो बस आप, मुझे लगता है कि पॉजिटिव है लाइफ को लेकर, और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो इसका ख्याल रखिए। और चलिए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ अभी, इंजॉय करते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हैपेंस इसी सफर को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रसवानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ मेरी कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें इस सुबह की हो रही हैं। यू नो, लाइफ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन टीचर है हम सबकी जिंदगी की। अब आप कहेंगे कि क्यों? हाँ तो भाई, इस क्यों का जवाब है ना मेरे पास, क्योंकि लाइफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए रिपीट होती रहती हैं। एक बार आप उससे निकल जाते हैं, फिर वैसी ही प्रॉब्लम या वैसी ही सिचुएशन जो आपको परेशान करने वाली होती है आपके आगे खड़ी हो जाती है ना। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप लाइफ का वो लेसन जो लाइफ आपको देना चाह रही है आप नहीं ले लेते हैं, तब तक वो जो टीचिंग है उसकी या वो जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में रिक्रिएट होती रहती है। आप बार बार उससे निकलते हैं, आप बार बार उसको लेकर परेशान होते हैं और वो अगेन आपकी लाइफ में रिक्रिएट हो जाती है। जैसे कभी कभी जिंदगी किसी एक बंदे से आपको दूर करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि यार इस टाइप के लोग ना जिंदगी में धोखा देते हैं, लेकिन बार बार आप उन पर भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा कि फिर वो भरोसा जो है वो बार बार टूटता है, और तब तक टूटता है जब तक आप उस तरह के बंदों को पहचान नहीं लेते। हाँ, तो ये जो तरीका है, ये जिंदगी का तरीका है आपको समझाने का, दर्द के साथ जो समझ आती है ना बॉस, वो भी बड़ी दमदार होती है। और उसी समझ के नाम फिलहाल ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रसवानी 107.01 एम पर।

0: हैपन सर जी हाँ, इट हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। अच्छा, जिंदगी को लेकर ना मुझे एक बात बड़ी बेहतरीन लगती है।
1: क्या?
0: देखिए, स्कूल और जिंदगी दोनों ही सिखाते हैं आपको, है ना। स्कूल में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और जिंदगी में भी आप मतलब हर कदम पे सीखते चलते हैं। मुझे लगता है इसीलिए किसी ने ये कहा है कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती या सीखना कभी बंद नहीं होता है। ये बड़ा सोच के कहा है क्योंकि उसको पता था कि यार स्कूल में सीख लिया वो तो एक एज खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जिंदगी है ना, वो आपको सारी जिंदगी सिखाएगी। इसीलिए किसी ने कहा है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। वैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि जो लाइफ के लेसन्स हैं या स्कूल के लेसन्स हैं, इनमें एक बड़ी बढ़िया बात छुपी है। अब देखिए, स्कूल के लेसन्स जो हैं या स्कूल की टीचिंग जो है आपको नहीं पसंद आ रही, आप उसे स्किप कर सकते हैं। भाई, बंक कर दिया स्कूल, उस दिन नहीं गए, है ना, या नहीं पढ़ा ध्यान से। लेकिन आपके जो जिंदगी के लेसन्स हैं आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते। कान पकड़ के जिंदगी आपको वो लेसन समझा के ही मानेगी, है ना। तो इसीलिए जिंदगी को बड़ा ही हसीन कहा जाता है शायद, और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी से बड़ा टीचर हमारा और कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

APJ अब्दुल कलाम साहब जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं और उनकी जिंदगी और उनके जो लेसन्स हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो APJ अब्दुल कलाम जी का एक थॉट जो है वो लाइफ चेंजिंग थॉट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसे आपके साथ इस वक्त बांटूंगी। मुझे एकदम से याद आया आज सर ने कहा था, APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी को सल्यूट करते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी, आपका जो काम है, आपका जो कर्मा है, उसे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको किसी को भी सल्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करते हैं, उसके साथ आप गद्दारी करते हैं या उसमें आप कुछ गड़बड़ करते हैं, तो फिर आपको जिंदगी भर सबको सल्यूट करना पड़ता है। सो चॉइस आपकी है कि आप अपना काम अच्छे से करते हैं या फिर भाई आपको सबको सैल्यूट करने में मजा आता है। तो बस जिंदगी हमारी है, चॉइस हमारी है ना। फिलहाल एक और ट्रैक सुननी है हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप एंजॉय कर रहे हैं इट।

वेल, ये था आज दोस्तों एक बार फिर से इट हैपेंस पर सताक्षी का एक और बेहतरीन और प्यार भरा साथ आप सबके साथ। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि भाई आपने तो इस वक्त में अपने मॉर्निंग से जो वक्त निकाला उसमें मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आई रियली होप कि आपके इस वक्त की कीमत को मैंने भी समझा हो और आज के इस शो से आपने भी जरूर कुछ सीखा हो और आज का ये शो आपको अच्छा लगा हो। चलिए आज के इस शो को यहीं पर, इट हैपेंस को यहीं पर वाइंड अप करते हुए इस वादे के साथ कि कल की मॉर्निंग होगी आपके साथ एक और मुलाकात, लेते हैं आज के सफर से इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असीं बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। Best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 01। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असीं बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते चार छे संदेश वालक दे नाल तुसीं बने होए। इस लिस्ट विच अगला नाम जिहड़ा हैगा है बिग बी सदी दे महानायक, जी हाँ अमिताभ बच्चन दा हैगा। अमिताभ बच्चन दे नाल केड़ी फिल्म दे विच होया सी, ओ है जी कुली। कुली दा किस्सा सुनानी है। अमिताभ बच्चन दे नाल फिल्म कुली दी शूटिंग दे दौरान जो हादसा होया सी उस नाल तो सब वाकिफ है कि नहीं। पुनीत इस पर दे शूटिंग दे दौरान उन्होंने तेजी नाल 5 वार मार दिता सी। इस तों बाद अमिताभ नूं अस्पताल विच भर्ती करवाउणा पिया सी ते 59 दिन यानी कि 60 तों 21 दिन घट उन्हां दा इलाज चलिया सीगा। 2 महीने तकरीबन उन्हां दा इलाज चलता रहा सी।

0: ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी आयनो जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश बने हुए। इस बार अगला नाम नवाब साहब थे। नवाब साहब है सैफ अली खान। जी हाँ, सैफ अली खान नुना फिल्म क्या कहना है, सेट ते एक खतरनाक हादसे का सामना करना पिया। क्या कहना, फिल्म तो याद आ गई ना थोनू। बहुत ही सोहनी प्रीति जिंटा दे नाल फिल्म है, बहुत ही प्यारी ते बहुत ही सोहनी स्टोरी भी हैगी है। खतरनाक हादसा होया सी उन्हां दे नाल। एक सीन विच उन्होंने बाइक चलानी सी, इस दौरान सैफ ने बाइक तो कंट्रोल खो दिता सी ते डिगदे डिगदे ओह वड्डे पत्थर दे नाल जा टकराया सी। उन्हां दा कुछ महीने तक कंटीन्यूअसली इलाज चलता रहा सी।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

स्कोर भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करंज भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
7: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
8: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
7: अरे वाह, इनका पता बताना।
8: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
9: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 01। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896। दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे, बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। आप सब कैसा फील कर रहे हो। मंडे का दिन है और मंडे वाली फीलिंग है। और फीलिंग कैसी है, मोटिवेशन की, क्योंकि एम फॉर मंडे, एम फॉर मोटिवेशन। और मंडे मोटिवेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि जब आप मंडे में मोटिवेशन से एंटर करते हो ना, तो आप बहुत सारा काम कर पाते हो। जी हाँ, भर भर के काम कर पाते हो। और ना सिर्फ काम कर पाते हो बल्कि स्मार्ट वर्क भी कर पाते हो। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको क्या रिलैक्समेंट चाहिए होती है, जो आपको मिली होती है वीकेंड पर। अब वीकेंड पे आपको रिलैक्स होने का मौका मिला है, रिजुविनेट होने का मौका मिला है, तो उसके बाद मंडे को तो जमकर काम करना चाहिए। और दोस्तों, एक और चीज मैं कहती हूँ कि हमेशा काम वही कीजिए जिससे आपको प्यार हो। और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया है जिस चीज से आपको एग्जैक्टली प्यार नहीं है, तो फिर उससे प्यार करना सीखिए या उसमें फन ढूंढिए। क्योंकि जब आप अपने काम में फन ढूंढते हो ना, तभी आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। ये हमेशा देखा गया है। जो बड़े बड़े बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और उसी के बाद वो बने जो वो बने। तो मंडे में मोटिवेट करके अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको तो पता ही है क्या होने वाला है अब। वेल, एक हेल्दी रिचुअल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हेल्दी रिचुअल जो है वो आपको फोकस्ड बनाता है, मुझे फोकस्ड बनाता है, हेल्दी रखता है मेंटली एंड फिजिकली, और वो सारी चीजें करने में हेल्प करता है जो अच्छे से, बेसिकली सिर्फ करने में हेल्प नहीं करता, अच्छे से करने में हेल्प करता है, जो कि हमें अच्छा फील करवाती है और हमें सक्सेसफुल, सक्सेस के रोड की तरफ लेकर जाती है। सो आइए, मतलब क्या करना है आपको बताइए, लेकिन इन केस आपको नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ जल्दी से शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ, और उसका नाम है मैं रंग शरबतों का। जी हाँ, खूबसूरत है ये गाना, पटा पोस्टर निकला हीरो मूवी से। और इसी के साथ करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की तरफ, क्योंकि गपशप बहुत सारी है, वीकेंड के बाद मिल रहे हैं तो बातें तो हमारे पास बहुत सारी है करने के लिए, खूबसूरत गाने भी होंगे इस माहौल को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मौसम के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है हमारे मूड को, हमारे प्रोग्राम्स को, और कैसा रहने वाला है हमारा वीक उसको भी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, बट अभी की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको 25.4 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है। जी हाँ, फील आपको थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वहीं रात की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस तक नहीं कि 18 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, और एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। भर भर के बारिश मैं देख पा रही हूं, और आप लोग मुझे ये बताइए आपके वहां आपके इलाके में कितनी बारिश हो चुकी है और कितनी हो रही है, जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि बारिश जो है सिर्फ आज ही नहीं कल भी पूरी तरह से आपको मिलने वाली है देखने को। जी हाँ, पूरी तरह से, वेल आई एम सेइंग 90% चांसेस है विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मतलब आज तो बारिश आई लेकिन कल और भी ज्यादा है, और वेडनेसडे को आपको जो है वो बारिश से आराम मिल सकता है। ऑल्दो बारिश फिर भी होगी लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफी आराम मिले बारिश से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। सो अभी के लिए तो मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि बिना छाते, बिना रेनकोट या जो भी आपको बारिश में जरूरी है चीज, उसके बिना बिल्कुल मत निकलिएगा। और तो और, ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है ऐसे बारिश में, तो ऐसे बारिश में आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से भी बचिएगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर पे रहिए, और घर पे रह के मजे से इस बारिश का आनंद उठाइए। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. मैं हूं निव्या शर्मा और यहां पर हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये है इवनिंग वाइब. अब यहां पर जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों के बारे में, क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपकी फरमाइशें हैं, आपका पार्टिसिपेशन है, आपका साथ है जो कि आप हमें देते हो, आपका साथ जो हमें मिलता है इस प्रोग्राम में. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश करना चाहते हैं, रेकमेंड करना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आपको फोन उठाना है और एक नंबर डायल करना है. नंबर है +9182888717011. I repeat, +9182888717.

701. तो उस पर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश. और आप जब तक भेज रहे हैं, यहाँ पर हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए.

जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही थी और थाईलैंड वालों ने एक नई डायनासोर स्पीशीज ढूंढ ली। जी हाँ, आपने सही सुना, तो थाईलैंड को मिल गया है एक नया डायनासोर। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, डायनासोर्स का तो जमाना ही नहीं है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेल ऑफ कोर्स, अगर डायनासोर मिला है तो मेरा मतलब है डायनासोर की हड्डी मिली है। जी हाँ, क्योंकि डायनासोर तो अब नहीं है, लेकिन डायनासोर के अवशेष जो है वो मिले हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा डायनासोर है। जी हाँ, क्योंकि जो बोन्स मिली हैं थाईलैंड वालों को उनकी जगह पर, उनकी कंट्री में, वो इतनी बड़ी है कि उसका वजन 270 मिलियन टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलियन टन और पता नहीं टन, बट द थिंग इज कि टन्स जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल है, टन्स जो है वो डेफिनेटली है। और यहां पर सिचुएशन ये है कि इसका नाम जो है उन्होंने रख दिया, इसका नामकरण भी उन्होंने कर दिया, उसका नाम रखा है उन्होंने नेगा टाइटन। या यू हर्ड मी राइट, इट्स अ नेगा टाइटन। और नेगा टाइटन जो है वो एक नई डायनासोर स्पीशीज है। माइंड यू, अभी तक जितनी भी डायनासोर स्पीशीज मिली थी उनका नामकरण जो है वो पहले ही हो चुका है, और हम काफी हद तक काफी सारे डायनासोर्स को ऑलरेडी पहचानते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो है उनकी बोन्स, उनके डीएनए को अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, और बहुत मतलब टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि एक नई डायनासोर, वो भी टोटली डिफरेंट डायनासोर स्पीशीज जो है वो मिली हो, और वो भी इतनी बड़ी स्पीशीज। जी हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे हाथियों को मिला के अगर एक कोई जो है जानवर बनेगा तो वो इतना ही होगा, एंड दैट विल बी नागा टाइटन। जी हाँ, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि थाईलैंड वालों ने इसका नामकरण किया है क्योंकि उन्हीं की धरती पे उन्हें ये बोन मिली है, सो ऑफकोर्स उनको हक मिलता है इस डायनासोर के नामकरण को करने का। आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा डायनासोर, अगर सच में ये इस दुनिया में होते तो हमारा क्या होता? वेल, आपका क्या होता? हम होते ही नहीं, क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। डायनासोर नहीं है इसीलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमने बाकी सारे बेजुबान क्रीचर्स की नाक में दम किया हुआ है। अगर डायनासोर्स होते तो इंसानों का तो पत्ता कट जाता बीड़ू। जी हाँ, पत्ता कट जाता। सो हाँ, आप मुझे बताइएगा क्या आप भी डायनासोर्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हो, मतलब काफी ज्यादा इंट्रीग्ड रहते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे वो चीज पसंद नहीं है जो लोग कहते हैं कि ओके, क्या हम फिर से जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर्स को इस धरती पर ले आए? नो, आई लाइक डायनासोर्स बट ओनली इन मूवीज। जी हाँ, कोई मुझे कहे कि उनको वापस लाया जाए? नो, आप मुझे बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जरूर। और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब, और आपको तो पता ही है इवनिंग वाइब मतलब मजेदार गाने और बहुत सारी गपशप। चलिए अब आपको बताते हैं तुम्बाड़। अगर आपकी फेवरेट मूवी है जस्ट लाइक मी, अगर आपने तुम्बाड़ नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको गूज़बम्स आएंगे और आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं इंडिया वाले कुछ हटके करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि तुम्बाड़ आई थी 2018 में, और उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि ये मूवी जो है वो इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी कि मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट सोच पाना, यू नो, और इसको एग्जीक्यूट कर पाना, और वो भी इतनी खूबसूरती से, इतनी रॉनेस के साथ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद तुम्बाड़ को फिर से री रिलीज किया गया, ऑफकोर्स उसने फिर से कमाई की, और जो कमाई वो पहले नहीं कर पाई थी उसको उन्होंने बाद में पूरा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि तुम्बाड़ को शूट करने के लिए बहुत सारे साल लगे। जी हाँ, वो सिर्फ 6 महीने या 1 साल की मेहनत नहीं है, क्योंकि उनको जो वेदर चाहिए था, उनको जो सीजन चाहिए था, वो आता था और वो चला जाता था। उनकी जो शूटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, तो एक ही मूवी जिसको बनाने में पता नहीं कितने ही साल लग गए। लेकिन अब तुम्बाड़ को लेकर एक और बात हो रही है। जी हाँ, तुम्बाड़ 2 जो है वो इन द मेकिंग है, और यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट एक बहुत ही डिटेल्ड कैमियो करने वाली है, क्योंकि वो तुम्बाड़ 3 को लीड करने वाली है। सोहम शाह के साथ वो दिखने वाली है। अगर आपको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, तो जरूर देखिए तुम्बाड़ एंड देन यू विल नो कि कैसे कितने खतरनाक लेवल के एक्टर हैं वो। जी हाँ, सो आलिया भट्ट का कैमियो आपको दिखने वाला है तुम्बाड़ 2 में, और आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को तुम्बाड़ पसंद थी, और अगर आपने नहीं देखी तुम्बाड़ तो आपने इतना बड़ा मास्टरपीस कैसे नहीं देखा। जी हाँ, वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको, अगर वो मेरी मम्मी ने सुन लिया या हम लोगों की मम्मी ने सुन लिया, तो वो बोलेंगी कि देखो देखो इसको, इसकी मम्मी ने इसको कैसे बड़ा किया है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या क्या क्या निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, पहले बात तो शुरू करो। वेल, नेपाल के एक कामी शेरपा है जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है 32nd टाइम, यानी कि 32 बार वो एवरेस्ट की पीक को छू चुके हैं। उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि बात तो सही है निवेश शर्मा, ये मम्मी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि मम्मी लोग बोलेंगे कि तुमसे उठ के इतना काम नहीं होता, ये बंदे को देखो, इसने 32 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा। जी हाँ, ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं चाह रही हूं कि हम लोगों की मम्मियां इसे ना सुने, लेकिन सिर्फ हम लोग ही सुने। और अगर मम्मी लोग ही इसको सुन रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आपकी मम्मी लोग ना सुने। जी हाँ, सो द थिंग इज कि नेपाल के कामी शेरपा है जो कि लिटरली उनको ऑनर किया गया है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है नेपाल के टूरिज्म और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि 1994 में उन्होंने पहली बार जो है वो एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और उसके बाद उन्होंने हर बार माउंटेन एवरेस्ट की जो है वो पीक को चढ़ा है, अनलेस वही कुछ वक्त ऐसे थे जब वो नहीं जा पाए। वो हर एक साल इस समिट के लिए वापस आते हैं। इकलौता वही वाला टाइम था जब हॉल्ट की गई थी जो है एवरेस्ट क्लाइंबिंग, और तब ही उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया था उसी साल, अदरवाइज वो हर साल इस समिट के लिए वापस आते हैं। मतलब 1994 से उन्होंने शुरुआत की थी और वो तब से लगे हुए हैं, 32 बार कर चुके हैं, 32 बार। अब सच में मेरी मम्मी मुझे कुछ काम करने के लिए बोलेंगी ना, तो मुझे शर्म आ जाएगी अगर मैं वो काम नहीं करूंगी, और मैं बोलूंगी मम्मी मैं थक गई। या आप लोग भी बोलोगे हम थक गए। भाई, देयर इज अ बंदा जो कि 32 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका है। जी हाँ, एंड इफ यू डोंट नो हु शेरपा इज, तो शेरपा वो लोग होते हैं, वो हेल्पर्स होते हैं जो माउंटेनियर्स को हेल्प करते हैं ऊपर ले जाने में, बिल्कुल समिट करवाने में। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अकेला जाके समिट नहीं करता, उनके साथ उनका शेरपा होता है, उनके साथ वो हेल्पर होता है जो बेसिकली कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा उनका सामान जो है वो लेकर चलता है। जी हाँ, उनको हेल्प करता है अगर देर इज एनी सिचुएशन, और पूरी तरह से उनको सेफ रखने के लिए उनको काबिल जो है वो माना जाता है और उनकी ड्यूटी होती है। तो शेरपास आर सो, मतलब आप नॉर्मल इंसान को मत देखिए जो माउंटेन चढ़ रहा है, शेरपा जो कि ज्यादा सामान के साथ, ज्यादा डेडिकेशन के साथ चढ़ रहा है, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज। जी हाँ, सो अगेन 1994 से लेकर अभी तक हर साल इज जस्ट अमेजिंग। एंड अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि अगली बार से जब आपको लगेगा कि ओ मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी देर नहीं एक्सरसाइज कर पाऊंगा, या मैं जिम में इतना जो है वो वेट नहीं उठा पाऊंगा, इतनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इतनी रनिंग नहीं कर पाऊंगा, रिमेंबर द नेम। जी हाँ, रिमेंबर द नेम, ताकि आपको याद आए कि कामी रीता शेरपा जो है वो लिटरली 32 बार माउंटेन एवरेस्ट चढ़ चुके। सो फिर आप नहीं थकोगे, माइंड गेम है ये, माइंड गेम। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
13: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अगर आप पेट पेरेंट हैं तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ओके निविया शर्मा, हमारा पूरा ध्यान है क्योंकि वी लव आर यू नो पेट किडोज. सो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक रिसर्च हुई है. जी हाँ, एक रिसर्च हुई है और उसमें कहा गया है कि 84% से ज्यादा डॉग्स जो है वो सफर करते हैं एंजाइटी से. जी हाँ, आपने सही सुना. एंड लेट्स बी क्लियर कि यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स. जी, आप लोग बोलोगे कि बेचारे डॉग्स भी अब एंजाइटी फेस कर रहे हैं. मतलब इंसानों का तो चल ही रहा था एकदम साड़ी सती, यहाँ पर बेचारे डॉग्स का भी काम शुरू हो गया. आई मीन साड़ी सती, इफ यू डोंट नो द वर्ड, इट यू नो ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड है. अगर आपको नहीं पता है तो मत जाइए इसके बारे में और इस पर यहाँ पर आपको मुद्दे पर आना है. मुद्दे पर जो है वो आपको अपना ध्यान देना है, और वो है कि डॉग्स को एंजाइटी हो रही है. एंड मोर देन 84% ऑफ डॉग्स जो हैं वो इस वक्त एंजाइटी फेस कर रहे हैं. और आपको मैं बता दूं कि ये जो रिसर्च हुई है वो हुई है टेक्सास A&M कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेस में. वहां पर एग्जामिन किया है बिहेवियर ऑफ 43,000 डॉग्स जो है 43,000 डॉग्स का जो है वो बिहेवियर जो है वो देखा गया, पूरा स्टडी किया गया, और उसके बाद जो है उन्होंने ये बता दिया है कि ये तो भाई कह रहा है कि एंजाइटी सिर्फ आपको नहीं आपके डॉग्स को भी हो रही है. सो खुद भी एंजाइटी से दूर रहिए, खुद भी हेल्दी रहिए, अच्छी चीजें कीजिए, पॉजिटिव चीजें कीजिए, खुश रहिए और अपने डॉग को भी खुश रखिए. जी हाँ. अच्छा, इसका साइंस क्या है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो अगर आपका डॉग एंशियस है, अगर उसको एंजाइटी है, तो विम्परिंग जो है, वेनिंग जो है, फ्रीजिंग, ट्रेम्बलिंग और अटेम्प्टिंग टू एस्केप और हाइड, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको अपने डॉगी में देखने को मिल रही हैं तो उसको एंजाइटी हो सकती है. अब आप लोग बोलोगे कि नहीं भैया शर्मा, एक दो मतलब यहां पर इतना खतरनाक काम चल रहा है, पेट्रोल प्राइजेस आर हाई, ग्रोसरी प्राइजेस आर हाई, लाइक आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी हाई. नो नो नो, यू शुड नॉट बी हाई. जी हाँ, आपको हाई नहीं होना है, आपको लो ही रहना है. बट द थिंग इज कि यहां पर आप बोलोगे कि इतनी सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं तो एंजाइटी हमें हो रही है, हमारे डॉगी को किस चीज की एंजाइटी हो रही है? वेल, ये आपको फिगर आउट करना है, क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स एंड यू नो व्हाट, आपने जो भी पेट पाला है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होते हैं. सो उन्हें बहुत ध्यान से उनके बिहेवियर को देखिए और उन पर ध्यान दीजिए. सिर्फ ये नहीं कि वो आपको देखकर कडल कर रहा है तो सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है और सब कुछ आपको सही लग रहा है. देखिए, ध्यान से उसके सिम्टम्स को देखिए और खुद की भी एंजाइटी को दूर कीजिए, अपने डॉग की एंजाइटी को भी दूर कीजिए. आई नो आजकल के जमाने में थोड़ा मुश्किल है कंसिडरिंग इतना कुछ चल रहा है, बट स्टिल यू गाड़ा वर्क ऑन दैट. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब यहाँ पर एक गीत प्ले करने का वक्त हो गया, गाना प्ले करने का वक्त हो गया, जो बेसिकली है फरमाइशी गीत। और ये फरमाइशी गीत हमारे बहुत ही खास लिसनर की तरफ से आया। अब उनका जो गाना है वो बारिश से रिलेटेड है, और भाई बारिश बाहर झमझम करके, रिमझम करके बारिश बाहर गिर रही है, यहाँ पर गाने हमारे पास वैसे आ गए हैं। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। गाना है भी बहुत सारा दिलचस्प। जी हाँ, चोरा चोरी छोरा छोरी, मिलेंगे छत पे खेलेंगे प्रेम गेम। या इट इज अ वन क्लासी सॉन्ग आई हैव टू से। जी हाँ, एंड अगेन बारिश हो रही है भाई। बारिश हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमोशन और फीलिंग्स जगाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बारिश जो है वो सच में हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बारिश को, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत कुछ करती है। बारिश में हमें बहुत सारी चीजें करना जो है वो पसंद है, फिर चाहे वो कुछ पढ़ना हो, कुछ सुनना हो, कुछ खाना हो, राइट? मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें एसोसिएटेड होती हैं बारिश के साथ हमारी। ऑफकोर्स जिन लोगों को बारिश पसंद नहीं है उनका डिफरेंट केस है, क्योंकि उनको तो नहीं इस बारे में पता चलेगा, वो क्या जाने बारिश का मजा। बट जिनको पसंद है उनका तो अपना ही फंडा है, वो कुछ ना कुछ स्पेशल करना पसंद करते हैं जब बारिश होती है। और गाने भी उनके अपने अपने फेवरेट हैं। जी हाँ, अब गाने जो हैं वो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड ने और हिंदी फिल्म जगत ने हमें बारिश से रिलेटेड बहुत सारे गाने दिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने दिए। सो अगेन मैं अपने लिसनर्स को कहूंगी कि आज बारिश ही थीम है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो जल्दी से कर दीजिए। और जो हमारे पास फरमाइश आ गई है वो हमारे बहुत ही खास लिसनर की तरफ से आई है, तो मैं आपको कहूंगी कि गेस कर लीजिए किसने भेजी है, अगर आप कर सकते हैं तो। और यहाँ पर ये गाना आपके लिए, गाना अगेन, चोरा चोरी मिलेंगे छत पे खेलेंगे प्रेम गेम।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, पहले थोड़े सीरियस मामलों के बारे में बात करेंगे, फिर ऑफ कोर्स ट्रम्प को रोस्ट करेंगे क्योंकि वो हमेशा हमें मटेरियल देते हैं। लेकिन पहले जाएंगे ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, विच इज अबाउट वॉर। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है, जब से ईरान अमेरिका इसराइल ने वॉर शुरू की है, उसके बाद से जो बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है वो भी उसका बर्न झेल रही है। सो अभी सऊदी अरब ने नष्ट किए 3 ड्रोन इराक के हवाई क्षेत्र से हुए थे दाखिल। जी अब फिर से इसमें कुछ देखा गया है। सऊदी अरब ने बताया है कि उसने रविवार को अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए 3 ड्रोन नष्ट किए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि 17 मई को 3 ड्रोन नष्ट किए गए। ये ड्रोन इराकी हवाई क्षेत्र से होकर सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल अल मलिकी ने कहा कि हमारा रक्षा मंत्रालय सही समय और सही जगह पर जवाब देने का अधिकार रखता है। देश के खिलाफ किसी भी कोशिश पर जरूरी कदम उठाया जाएगा। रविवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी स्थित बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि यूएई ने अब तक ये नहीं बताया कि यह हमला किस ओर से हुआ। गौरतलब है कि क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हैं क्योंकि अमेरिका इसराइल ने ईरान पर हमले किए थे। अप्रैल में युद्ध विराम लागू होने के बाद इन देशों में संघर्ष रुका हुआ है, लेकिन इराक से सऊदी अरब और कुवैत समेत खाड़ी देशों की तरफ ड्रोन हमले अब भी जारी हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? वेल ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस। लेकिन वो किस हद तक चले जाएंगे वो तो वक्त ही बताने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वहीं अमेरिका के दो लड़ाकू विमानों के टकराने पर ईरान ने तंज कसा। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है क्या है माजरा तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के दो लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकराए हैं। अमेरिका में एक एयर शो के दौरान दो लड़ाकू विमान हवा में आपस में टकरा गए, जिस पर अब ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट ने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिकी सेना ऐसे बेकार के ऑपरेशन में ही जीत सकती है, किसी वास्तविक लड़ाई में नहीं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, पर ऐसे में तो ये वाली लड़ाई में भी उनसे नहीं जीता जा रहा। दरअसल अमेरिका में यह हादसा रविवार को हुआ, जहां एक एयर शो के दौरान EA-18G जेट आपस में टकराया, जिसके बाद चार क्रू सदस्य पैराशूट के जरिए तुरंत सुरक्षित बाहर आ गए। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि जो जेट्स टकराए उनकी कीमत लगभग $7 करोड़ यानी कि लगभग 672 करोड़ रुपए है। जी हाँ, इससे पहले 2018 में अमेरिका में ही गन फाइटर स्काइज एयर शो में एक ग्लाइडर पायलट की दुर्घटना में मौत भी हुई थी। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एक और फरमाइशी गीत यानी कि रेकमेंडेड सॉन्ग अगर हम कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे बहुत ही खास लिसनर के द्वारा ये भेजी गई है फरमाइश प्यारी सी, और ये गाना है बरस जा। अगेन जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, तो गाने भी होने चाहिए एकदम मजेदार, राइट? सो अगेन थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत सा गाना बिना देर किए हुए हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

जी दोस्तों, इसके साथ खबरों की बात हो रही है और खबरों में अब जरा हम चलते हैं सीधा भारत की तरफ, क्योंकि लखीमपुर खीरी में ट्रक और वैन में टक्कर, 10 लोगों की मौत। जी हाँ, बिल्कुल खबर ये अच्छी नहीं है वहां से। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ट्रक और मैजिक वैन में टक्कर होने से 10 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि हादसा सोमवार सुबह हुआ, जब एक मैजिक वैन लखीमपुर से बहराइच की तरफ जा रही थी। उन्होंने कहा कि दोरहरा कोतवाली इलाके में भरेटा गांव के पास बहराइच की तरफ से आ रहे ट्रक से मैजिक वैन की भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। डीएम ने बताया कि मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, 6 लोग बहराइच जिले के निवासी भी हैं। जी हां, वहीं भारत की तरफ से एक और खबर। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। मैं इतना कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सारे सर्वोच्च सम्मान सभी देशों के ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे कि लिटरली कोई व्यक्ति जो है वो अपनी फेवरेट चीजें इकट्ठा कर रहा होता है ना, मतलब फेवरेट मिनिएचर्स और वो चीजें, या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे क्योंकि हर एक कोई दूसरा देश, मतलब हर एक नहीं देता होगा तो हर दूसरा देश तो इनको सर्वोच्च सम्मान दे ही देता है। जी हाँ, सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान मिला। एक तो इतना लंबा नाम रखा किसने है ये। जी हाँ, ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। पीएम मोदी को स्वीडन के ग्योर्थनबर्ग शहर में रविवार को यह सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 30वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। जैसे मैंने कहा आपको कि तो ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं जैसे वो बच्चे अपने टॉयज इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, लिटरली, मतलब इतने सारे सर्वोच्च सम्मान। और सर्वोच्च सम्मान का मतलब एक और चीज है कि आपको इजिली वहां पर नेशनैलिटी या फिर आपकी, मतलब आप वहां पर ले सकते हो, आप वहां पर इजिली जाके उस कंट्री में रह सकते हो। 31 देशों से मिल चुका है। जी हाँ, एंड यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बगेन बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है रिम झिम गिर सावन। ऑफकोर्स मेरे लिसनर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन खूबसूरत गानों को फरमाइश करने में, क्योंकि बारिश है भाई, बारिश से रिलेटेड गाने फरमाइश करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा मेरी तरफ से भी एक खूबसूरत सा गाना तो होना चाहिए, और ये है वो पुराना गाना जो सच में आपको बारिश से मोहब्बत करवा देगा।

एक ही चीज कहना चाहूंगी, कुछ कॉम्पोजिशंस ना मतलब आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होती है, मतलब कुछ धुन जो होती है ना वो आपके दिल के इतने करीब हो जाती है कि आप उनको ऐसे ही अलते जाते चलते फिरते बस गुनगुनाते रहते हो, आपके दिमाग में वो ना बज हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, मतलब इसके जो गायकी है वो तो है ही कमाल, लता जी ने गाई, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी। लता जी कौन सा गाना अच्छा नहीं गाती। सो लता जी ने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया हुआ है। लेकिन आदि बर्मन यानी कि पंचम दा, क्या क्या क्या कॉम्पोजिशन बनाई है भाई, क्या कॉम्पोजिशन बनाई है, मतलब मैं फैन हूँ, फैन। जी हाँ, और योगेश आपके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं, बट आई थिंक द हाईलाइट इज कॉम्पोजिशन। मुझे ये धुन बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। वेल ऑफकोर्स अगेन, गाने जो है उनमें धुन ज्यादा आकर्षित करती है, लिरिक्स ज्यादा आकर्षित करते हैं, या फिर गायकी ज्यादा आकर्षित करती है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा कभी तो सब कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ एक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वेल आई नो। इसी के साथ दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं ट्रम्प के बारे में, बिकॉज अगर हमने अभी बात नहीं की तो कब करेंगे, राइट? क्योंकि हंसने का हक हम सबको है, और हंसे नहीं तो इस दुनिया में क्या ही किया, इस जिंदगी में क्या ही किया। सो अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी, आपको तो पता ही है ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग जो है, हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है वो हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा था, बहुत सारी सीरियस चीजें थी, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सीधी वाली चीजें थी। ओके, बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, ट्रेड किया है एक दूसरे के साथ, बहुत सारे चीजें उन्होंने फाइनलाइज की है। लेकिन यहां पर एक मीम था जो कि सच में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। अब ऑफकोर्स हम ट्रम्प को रोस्ट करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उसका जिक्र यहां नहीं किया तो कहां किया, राइट? सो हुआ कुछ ऐसा कि मैं देख रही थी, सोशल मीडिया चला रही थी, और वहीं पर शी जिनपिंग और ट्रम्प एक दूसरे से बात करते हुए मुझे नजर आते हैं। जी हाँ, और यहां पर नीचे जो बंदा मीम बना रहा था उसने लिखा हुआ था कि ट्रम्प डज नॉट नो चाइनीज एंड शी जिनपिंग डज नॉट नो इंग्लिश, सो व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, मतलब द फनी थिंग इज कि बात में दम है, मतलब ट्रम्प को आती नहीं है क्या चाइनीज, और ऐसा कहा जाता है कि शी जिनपिंग को भी अंग्रेजी नहीं आती। ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं अंग्रेजी आती है, ट्रम्प को चाइनीज डेफिनेटली नहीं आती, इतना तो मैं पक्का बोल सकती हूँ। बट शी जिनपिंग कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करते, वो सीधा सीधा बोलते हैं कि मैं तो चाइनीज में बोलूंगा बीड़ू, तुमको समझ आता तो आता, नहीं तो तुम यहां से भागता। जी हाँ, यहां पर शी जिनपिंग हमेशा ऐसा बोलते हैं। प्लस ऑफकोर्स चाइना को उन्होंने जहां पर खड़ा कर दिया है, अब उसके बाद गुरूर अगर नहीं आया तो क्या आया, राइट? सो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ। अच्छा, जब ये एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे थे, बड़ी ही हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, और ट्रम्प के बाजू में बैठे हुए थे शी जिनपिंग। अब शी जिनपिंग उस वक्त अपनी सीट पे नहीं थे, ट्रम्प वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन शी जिनपिंग की डायरी वहां पर पड़ी हुई है, और ये फुटेज ना सच में वायरल हो रही है। ट्रम्प ना बड़े ही अच्छे से शी जिनपिंग की डायरी, सब अपने अपने बातों में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ चल रहा है, लेकिन ट्रम्प बींग ट्रम्प वो बड़े ही फनी तरीके से साइड में ट्रम्प की लिखी हुई डायरी को जो है वो खोलते हैं, एक पन्ना पलटते हैं, दूसरा पन्ना पलटते, तीसरा पन्ना पलट के उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अगर मैं कुछ देखना भी चाहूंगा तो कैसे देखूंगा, अपने को चाइनीज नहीं आता, अपने को नहीं आता चाइनीज, या दैट्स व्हाट इज रिएक्शन वाज, और फिर वो डायरी बंद कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स यहां पर मतलब क्या कहूं मैं इस इंसान के बारे में, इनको हर जगह घुसना है, इनको हर जगह ताका जाकी करनी है, और यहां पर मैं ये कहूंगी कि अच्छा ताका जाकी कर भी कहां रहे थे, चाइना में, चाइनीज में क्या पढ़ेंगे, नीहाओ जी हाँ। सो ये सब चल रहा था, और ऑफकोर्स ये वीडियो वायरल हो रही थी, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कितना बड़ा प्रेसिडेंट, बड़ा प्रेसिडेंट तो मैं उनको नहीं कहूंगी, पर हाँ पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट तो वो अभी भी हैं, और ऐसे में इतनी छोटी छोटी चीजें करते, मतलब ये छोटी हरकतें करते, क्या बंदा है ये। जी हाँ, आप लोग मुझे बताइए कि ट्रम्प की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा फनी लगती है, और ऑफकोर्स इट हैज टू बी स्टूपिड, आपको उनकी तारीफ करना अलाउड नहीं है, मतलब तारीफ वैसे वाली तारीफ आप कर सकते हो, लेकिन वैसे तारीफ तारीफ नहीं कर सकते। ओके, सो यू टेल मी अबाउट योर फेवरेट मोस्ट फनीएस्ट थिंग जो कि ट्रम्प करते हैं, और इसी के साथ मैं आपको एक और मजेदार गाना सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।

जी दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर हंटा वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। आई वुड से प्रकोप नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा हैवी वर्ड यूज कर रही हूँ, बट द थिंग इज कि हंटा वायरस जो है वो हॉन्ट कर रहा था बहुत सारे लोगों को। अभी वो आया भी नहीं था पर्टिकुलरली बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन फिर भी वो जितना उसके बारे में बात हो रही थी, क्रूज शिप पे उसका आउटब्रेक हुआ, अर्जेंटीना से हुआ या उससे पहले हुआ, यू नो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही थी। लेकिन यहाँ पे इबोला वायरस चल रहा है। ओ माई गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरसेस को 2026 वाला साल कुछ ज्यादा ही पसंद है। मतलब यहां से वायरस, मतलब एक पत्थर उठाओ तो 10 वायरसेस निकल रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। सो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि अफ्रीका में इसका काफी प्रकोप चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से अपनी जान जो है वो खो बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे काफी जो है वो प्रभावित हुए हैं। खासकर जैसे मैंने कहा कि इसका आउटब्रेक जो है वो देखने को मिला है, जो अथॉरिटीज हैं वो इसको अच्छे से जो है वो देख रही हैं, इसको ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो

वायरस के बारे में बात की जाएगी तो वो बोलेंगे कि ओह हंटा वायरस, कौन सा हंटा वायरस, क्योंकि हंटा वायरस जो है वो इतना खतरनाक नहीं है, ये वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ एक और वायरस है जो खतरनाक है, विच आई एम गोना टॉक अबाउट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दिनों में जो आजकल का जो जमाना है ना, सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल सबसे ज्यादा रखिए। मुझे जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज लगती है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो बहुत सारी चीजों से निपटा जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम पूरा डट के रहना है, एकदम पूरा यू नो अभी से रेडी रहना है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो दोस्तों मेरे गले के साथ क्या हो गया, बट यहां पर मैं कहने की कोशिश यही कर रही हूं कि इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रखिए। हम सबको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखने की जरूरत है, और फिलहाल मुझे अपना गला ठीक रखने की जरूरत है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ जैसे कि मैं बात कर रही थी वायरसेस के बारे में, ऐसे वायरसेस जो कि लिटरली प्रकोप मचाए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे हम पहले हंटा वायरस के बारे में बात कर रहे थे जो कि लैटिन अमेरिका से शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद शुरू तो वो एग्जैक्टली साउथ कोरिया से हुआ था बहुत पहले, लेकिन इस बार उसका आउटब्रेक लैटिन अमेरिका से देखा गया था। और उसके बाद जो संक्रमण बढ़ा था वो क्रूज शिप पे बढ़ा था। नाउ देयर आर थिंग्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा इबोला वायरस और एक नोरा वायरस भी है जिसका आउटब्रेक क्रू कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर देखा गया। आप लोग बोलोगे कि सारे के सारे आउटब्रेक, मतलब मोस्ट ऑफ द आउटब्रेक जो है वो सिर्फ क्रूज शिप पे क्यों होते हैं? वेल ऑफ कोर्स क्योंकि जगह जगह से लोग आते हैं, वो चढ़ते हैं और फिर वो एक जर्नी पर निकलते हैं, वो जगह जगह और जाते हैं, फिर और लोगों से मिलते हैं और वो सारे मिलकर एक साथ एक ही वेसल पर रहते हैं। सो ऐसे में इसीलिए आउटब्रेक सबसे ज्यादा जो है वो क्रूज शिप पे देखे जा रहे हैं। सो अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इबोला वायरस हो, नोरा वायरस हो, हंटा वायरस हो या कोई वायरस हो, सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, अगर आपको छुट्टियां मनाना, घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। जी हाँ, एंड आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से कि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आपको घूमना है, कहीं बाहर जाना है, कंट्री से बाहर जाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट से ज्यादा मैं कहती हूँ बकेट लिस्ट बनाइए, उसको हर एक चीज को टिक कीजिए जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू नो, कोई एडवेंचर, कोई वेकेशन, किसी जगह पे घूमना है, आई एम ऑल फॉर इट, बट द थिंग इज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। जी हाँ, आपको पता ही है जो पूरी दुनिया में सिचुएशन कैसी चल रही है। सबसे पहले तो एक रीजन ये क्योंकि ऑफ कोर्स ये वायरसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त इनके आउटब्रेक्स देखे जा रहे हैं, और ऐसे में घूमना फिरना जो है, बाहर जाकर घूमना फिरना, दूसरी कंट्री जाके घूमना फिरना कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ कर सकता है। दूसरी चीज, जी हाँ दूसरी चीज, ये सेफ भी नहीं है अभी। जी हाँ, आपको पता ही है सिचुएशन जो है वो कितनी ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। मतलब एक दूसरा तीसरा देश ऐसे जैसे, मतलब सबके सब देश जो है वो एक दूसरे से लड़ने की कागार पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा इतना सीरियस भी नहीं है। वेल ऑफ कोर्स इतना सीरियस भी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा कम सीरियस भी नहीं है। सो आपको लग रहा है कि मिडल ईस्ट का जो बवाल है वो मिडल ईस्ट तक रहेगा? नो, ऐसा नहीं है। सो ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता है, और किसी भी कंट्री में जाना इस वक्त ठीक नहीं है। किसी दूसरी कंट्री में जहां है वहां रहिए, वहीं आजू बाजू घूमिए फिरिए, बिकॉज यू नो कुछ टाइम होता है जिंदगी में जब आपको लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि ओके जहां पर हो वहां रहो, ज्यादा मतलब फड़फड़ाना नहीं है हमको, ज्यादा मतलब नहीं हमको एडवेंचर के बारे में सोचना है, करने हैं, लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। जी हाँ, क्रूज शिप से जाने से आपको बचना है। कोई भी ऐसा ट्रिप जो आप क्रूज पर प्लान कर रहे हो, मैं कहूंगी कि अभी रहने दीजिएगा, बिल्कुल अभी रहने दीजिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। एंड या मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, यू नो वट एवर वर्क्स फॉर यू डू इट, बिकॉज इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो सारी चीजों से निपटा जा सकता है। और बाकी लास्ट में एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बहुत क्लैमिटी नहीं आ गई है, हम लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बट द थिंग इज कि हमको हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया का वो जो केओस है वो एंटर कर सकता है हमारे यहां भी। सो ऐसे में कर सकता है, उसी के लिए हमको प्रिपेयर रहना है, बीट फिजिकली, यू नो, बीट मेंटली। सो या कहीं वेकेशन प्लान मत कीजिए अभी कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बाहर वाली जगह। एंड उसके अलावा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और ऑफ कोर्स मैं अभी प्रोग्राम एंड नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोग्राम एंड करने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं है। अभी हम अपने फेवरेट सेगमेंट की ओर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खूबसूरत सा गाना जो है वो सुनाने वाली हूँ।

0: बताने कब आए।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मेरे गले की जो है वो व्यस्तता थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट द थिंग इज कि आई एम वर्किंग ऑन इट, सो डोंट वरी, प्रोग्राम में कोई रिकावट नहीं आएगी, मेरा गला भी नहीं। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा लेकर चलते हैं आपको सीधा अपने फेवरेट सेगमेंट की ओर, और वो है ऑफकोर्स हमारा ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, आज तो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट पहले ही शुरू हो गया था, ऐसी फीलिंग हमें आ गई थी। वेल, आपकी फीलिंग जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे भी वैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हमने पहले ही खूबसूरत, जी हाँ, सिर्फ पुराने नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत पुराने गाने प्ले करने आपके लिए शुरू कर दिए थे, और वो सच में बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन अब हम पूरी तरह से पुराने गाने प्ले करने वाले हैं, नो न्यू सॉन्ग। जल्दी से आप अपनी फरमाइश कर दीजिए अगर आपके पास कोई पुराना गाना है जो कि आपको बहुत ही अजीज है, बहुत ही पसंद है, और आपको बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से उसको सुनना है, तो जल्दी से कर दीजिए। अभी इंतजार करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी से कर दीजिए। यहां पर अब बिना देर किए हुए आपको लेकर चलते हैं सेगमेंट के पहले गाने की तरफ, जो कि है खूबसूरत, और ये है फरमाइशी गीत हमारी बहुत ही खास लिसनर, हमारी फेवरेट लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से, और ये गाना उन्होंने किया है फरमाइश, बरसात में हमसे मिले तुम। जैसे मैंने कहा था कि थीम है बारिश, भाई बारिश हो रही है बाहर, तो थीम कैसे नहीं होगी बारिश, तो बारिश हमारी थीम सेट हो चुकी है। थैंक यू सो मच इस थीम को फॉलो करने के लिए, और एकदम खूबसूरती से इसे पूरा भी करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना हमारी तरफ से।

क्या कहा जाए मेरे लिसनर्स की फरमाइशों के बारे में, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत या अत्यधिक से भी अत्यधिक खूबसूरत। जी हाँ, खूबसूरत गाने और आपकी फरमाइशें दिल लूट लेती हैं मेरी। जी हाँ, सो इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा सुनाते हैं। अगर आप रफी साहब के फैन हैं तब तो आपको और भी मजा आएगा इस किस्से को सुन के, क्योंकि ये किस्सा रफी साहब के बारे में ही है और साथ में लेजेंडरी सिंगर गीता दत्त जी के बारे में भी है। अब गीता दत्त जी के बारे में हम क्या ही कहें, राइट? मतलब वो इतनी खूबसूरत तो थी, लेकिन वो साथ में, मतलब वो जो गायकी करती थी ना और जो अदायगी थी उनकी, वो जो एकदम यू नो चंचल सी आवाज और ऊपर से उसमें भी शरारत, वो अदाएं जो वो लेकर आती थी। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब गीता दत्त जी गाती थी तो उसके बाद वो सिर्फ गाती नहीं थी, वो अपनी अदाएं उन गानों में ले आती थी। जी हाँ, तो ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है कि एक मूवी जो कि मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना जो है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्टूडियो में दोनों पहुंचे हुए थे, रफी साहब और गीता दत्त जी पहुंचे हुए थे, क्योंकि उन दोनों को ही ये गाना गाना था। फिर क्या था, रफी साहब जो है वो अपना गाना गाते हैं, अपना वाला पार्ट गाते हैं, और फिर बीच में गीता दत्त जी की बारी आती है अपना पार्ट गाने की। जब गीता दत्त जी गाने लगती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत गा रही होती है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, और फिर वो एकदम से कुछ बड़ा ही प्यारा सा एलिमेंट जो है वो उस गाने में ले आती है। मतलब ऑफ कोर्स एक शरारती सी जो है वो आवाज जो है वो इसमें बीच में ले आती है, मतलब शरारतीपन जो है वो इस गाने में ले आती है, और उसको देखकर रफी साहब उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब आप खुद सोचिए कि रफी साहब जो खुद इतने बड़े लेजेंड है, खुद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वर्सिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, वो अगर किसी को सुन के, वो अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए तो क्या ही दम रहा होगा गीता दत्त जी की आवाज में। फिर क्या था, बस यहां पर बहुत ही खूबसूरती से गीता जी वो गाती हैं और रफी साहब उनको देखते हैं, और फिर रफी साहब जो हैं वो उसको सुनकर एकदम से मुस्कुरा देते हैं। जी हाँ, मतलब उनको वो मुस्कुरा देते हैं, और ओपी नैयर साहब जो इस गाने को बना रहे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं चलने दो, वो इशारा करते हैं चलने दो। अब क्योंकि गीता दत्त जी ने वो किया होता है जो कि स्क्रिप्ट में था ही नहीं, फिर क्या था, फिर रफी साहब उनको देखते रहते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं, और फिर जब रफी साहब वाला पार्ट आता है तो रफी साहब उन बोल को ही भूल जाते हैं। सो पूरे हिस्ट्री में, मतलब रफी साहब के पूरे करियर में एक पल ऐसा भी था जब रफी साहब अपने बोल भूल गए थे और उसका क्रेडिट जाता है गीता दत्त जी को। जी हाँ, मतलब इतना जबरदस्त उन्होंने गा दिया, इतनी खूबसूरती से उन्होंने गा दिया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से, मतलब एक ऐसा अंदाज से उन्होंने गा दिया कि रफी साहब भी अपने बोल भूल गए, मतलब किसी बुरे तरीके से नहीं बल्कि अच्छे वे में। और ये तरीका था दो बड़े लेजेंड्स का अपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करने का। जी हाँ, फिर क्या था, उसके बाद जो है उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है और सबके सब लोग जो है वो गीता दत्त जी को ऐसे देख रहे होते कि क्या ही लेनी है ये। जी हाँ, यहाँ पर वही गाना जिसके रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये सब हुआ था आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ. जैसे मैंने आपको बता दिया किस्से के बारे में कि रफी साहब अपनी लाइंस भूल गए थे, बट या इट हैपेंड, ये हुआ था. चलिए आपको एक और खूबसूरत से अब किस्सा सुनाते हैं. और खूबसूरत सा किस्सा तो नहीं, ये थोड़ा फनी सा किस्सा ज्यादा है. खूबसूरत और फनी आप दोनों ही लगा लीजिए. सो एक प्रोग्राम में जब पूछा गया वहीदा रहमान जी से कि आपके टाइम पे सबसे ज्यादा लेट हीरो कौन सा होता था, मतलब सबसे ज्यादा लेट कौन आता था सेट पे, और वहीदा जी कहती हैं कि सीधा मतलब बिल्कुल देर किए बिना, बिल्कुल सोचे समझे बिना, राज कपूर. जी हाँ, वहीदा जी कहती हैं. और सामने से जो है, जो इंटरव्यूअर है, वो हंसना शुरू कर देते हैं. सबके सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑफकोर्स राज कपूर जो है इज द ग्रेटेस्ट शोमैन. मतलब ऑफकोर्स उनकी एक्टिंग, उनकी जो फिल्म मेकिंग है, उनके बारे में सबके सब लोग जानते हैं, उनकी महफिलों के बारे में भी सब लोग जानते हैं. लेकिन ये चीज कि सच में उनको लेट आना बहुत ज्यादा पसंद था, वो लिटरली किया करते थे. वहीदा जी कहती हैं कि मैंने उनके साथ दो पिक्चरों में काम किया है. तो एक होती थी 10 से 2 की शिफ्ट, और फिर एक होती थी 2 से जो है वो 8 की शिफ्ट. तो मैंने उन्हें कहा कि मतलब जब भी हम वो करते थे पिक्चर में काम, दो पिक्चरों में जो मैंने काम किया है, तो अगर उन्हें बुलाया जाता था सुबह तो वो 2 बजे आया करते थे. मतलब अगर उन्हें 10 बजे बुलाया गया है तो वो 2 बजे आया करते थे. तो मैंने प्रोड्यूसर के पास जाकर कहा कि प्रोड्यूसर साहब, ऐसा कीजिए कि अगर इनको वैसे ही लेट आना पसंद है तो आप 2 से 10 की शिफ्ट कर दीजिए. जी हाँ, मतलब आप वो पहले वाली शिफ्ट जो है वो रहने दीजिए. अगर हमको काम ही करना है और ये लेट ही आने वाले हैं तो 2 से 10 की शिफ्ट कर दीजिए. प्रोड्यूसर साहब कहते हैं हाँ, आइडिया अच्छा है. कहते हैं हमने वो काम किया तो राज कपूर ने उसमें भी लूप होल निकाल लिया. अगर हमने 2 से 10 की शिफ्ट कर दी तो उन्होंने 6 बजे आना शुरू कर दिया. जी हाँ, वो फिर वो 6 बजे आते थे. जी हाँ, मतलब अगर 2 से जो है वो 6 या 2 से 8 काम किया करता था, अगर 2 से 8 काम होता था तो वो मतलब 10 से 8 काम होता था तो वो 2 बजे आते थे. अब हमने 2 से 10 कर दिया तो 2 से 10 में भी उन्होंने लूप होल निकाल लिया, वो 6 बजे आया करते थे. फिर क्या था, फिर हमारी मूवी जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होती थी आराम से. राज कपूर साहब आराम से आते थे, आराम से काम करते थे और आराम से चले जाते थे. कहते और हम सब जो कि लिटरली सुबह से आकर बैठे होते थे, हम लोगों को लगता था क्या ही चल रहा है यहाँ पर. बट या राज कपूर टैलेंट के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर लेट लती वो भी थे. चलिए ठीक है, अगली बार जब भी मैं लेट होने वाली होंगी ना, मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखो भाई, बड़े बड़े स्टार्स मतलब राजेश खन्ना और राज कपूर साहब लेट हुआ करते थे, मैं थोड़ी लेट हो गई तो क्या होगा. अब सामने वाले मुझे यही बोलेंगे कि तुम राजेश खन्ना या राज कपूर नहीं हो बरखुरदार, तुम निव्या शर्मा और तुम टाइम पे आओ. सो हम सबको टाइम पे आना है क्योंकि लेट्स बी रियल, वी आर नॉट राज कपूर एंड राजेश खन्ना. यहां पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है. जा रहे हैं हम, और वापस आएंगे कब, वेल ऑफकोर्स कल आएंगे. अब मंडे है, अभी तो हफ्ते की शुरुआत हुई है, कल मिलना होगा. बहुत ही जबरदस्त बातें आपको सुनाएंगे, गपशप करेंगे, खाने गाने भी आपको सुनाएंगे, खाने नहीं गाने भी सुनाएंगे आपको. और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे कल. बाय, सी यू, टाटा. सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM. हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए ये प्यारे प्यारे गाने. और ये लास्ट सॉन्ग जिसके साथ मैं कंक्लूड करने वाली हूँ इस प्रोग्राम को, वो भी बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि वो अगेन एक रिकमेंडेड सॉन्ग है, एक फरमाइशी गीत है बहुत ही खास शख्सियत की तरफ से. जी हाँ, हमारे फेवरेट इंसान की तरफ से. तो यहां पर उन्होंने किया है जो गाना फरमाइश, वो है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. क्या ही कहा जाए, दिस इज अ क्लासिक फेवरेट. मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग क्योंकि ये गाना ही अपने आप में स्टेटमेंट है, खुद ही कह देगा. जी हाँ, बाय, सी यू, टाटा. सुनते हैं और मिलते हैं कल.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के लिए $2 बिलियन का हाउसिंग फंड। सरकार ने आज ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में घरों की कमी को दूर करने के लिए पूरे $2 बिलियन के फंड का ऐलान किया है। इस पैसे से क्वींसलैंड में करीब 50,000 नए घर बनाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं ब्रिस्बेन सहित क्वींसलैंड में भारी बारिश का अलर्ट। ब्रिस्बेन और न्यू साउथ वेल्स के इलाकों में आज मौसम में करवट ली है। एक बहुत बड़े वेदर सिस्टम की वजह से क्वींसलैंड में भारी बारिश शुरू हो गई है। गोल्ड कोस्ट के पास नेचुरल ब्रिज इलाके में आज सुबह तक 106 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जिम चार्मर्स ने टैक्स बदलावों पर विरोधियों को घेरा। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेजरर जिम चार्मर्स ने आज क्वींसलैंड में मीडिया से बात करते हुए सरकार के नए टैक्स बजट का बचाव किया है। न्यूज पोल में सरकार की रेटिंग गिरने के बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर डेथ टैक्स जैसी अफवाहें उड़ाकर लोगों को डरा रहा है। इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बड़ा पुलिस एक्शन। ब्रिस्बेन और पड़ोसी इलाकों में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत पुलिस ने लगभग 1,000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है या उन पर चार्ज लगाए हैं जिनका डोमेस्टिक वायलेंस का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। वहीं रेस हार्स ब्लाइंड रेंज ब्रिस्बेन के लिए रवाना। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ब्रिस्बेन से एक खबर है। क्रैनबोर्न में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मशहूर रेस हार्स ब्लाइंड रेंज कल यानी मंगलवार को फ्लाइट से ब्रिस्बेन पहुंच रहा है। वो यहां अगले हफ्ते होने वाले ग्रुप 2 BRC सायर्स प्रोड्यूस टैक्स मैच में अपना डेब्यू करेगा। इसी के साथ सिडनी की तर्ज पर ब्रिस्बेन में भी बढ़ सकती है मकान मालिकों पर सख्ती। ब्रिस्बेन के रेंटर्स के लिए अब एक अहम खबर है। न्यू साउथ वेल्स में नए कड़े नियमों के तहत आज 30 से ज्यादा मकान मालिकों पर बिना किसी वाजिब वजह के किराएदारों को निकालने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा और नॉर्डिक समिट। आज की सबसे बड़ी खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। पीएम मोदी आज नॉर्वे पहुंच रहे हैं। ये पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा है। यहां वो नॉर्वे के पीएम के साथ मिलकर ट्रेड और एनर्जी सेक्टर पर बड़ी डील करने वाले हैं। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया FD पर ब्याज। अगर बैंक में पैसे रखने से कुछ होता है तो ये खबर बहुत ही अच्छी है। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया ने आज यानी 18 मई से 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा 1 साल से 3 साल तक की FD कराने वालों को मिलने वाला है। वहीं UAE न्यूक्लियर प्लांट हमले पर भारत की चिंता। भारत ने UAE के ब्राक न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को लेकर आज गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ऐसे हमले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वहीं NEET UG 2026 पेपर लीक मामला। जी हां, NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में आज दिल्ली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन के CBI कस्टडी में भेज दिया है। इसी के साथ केरल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। केरल की राजनीति से आज एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस के सीनियर नेता VD सतीशन आज केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा इंटरनेशनल खबरों की तरफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक समझौता। जी हां, ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन में हुई समिट के दौरान कई बड़े समझौते हुए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों देशों ने ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर रिश्ते सुधारने पर सहमति जताई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की चौंकाने वाली रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज दुनिया में दी जाने वाली फांसी की सजाओं को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में रिकॉर्ड मौत की सजाएं दी गईं। वहीं वेस्ट बैंक में नया इजरायली कानून लागू। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव के बीच वेस्ट बैंक में आज से एक नया इजरायली मिलिट्री कानून लागू हो गया है। इस नए आदेश के तहत अब इजरायली सेना पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी कैदियों को सीधे मौत की सजा दी जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलना होगा कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
8: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
9: Hi, this is Amitabh Bachchan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: Hi, this is Salman Khan.
13: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
14: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
16: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
17: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
18: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।
12: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
18: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
12: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
18: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
19: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
20: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
19: ऐसा क्या खास है वहाँ?
20: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
19: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
20: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
12: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
18: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
12: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
18: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
21: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
22: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
21: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
22: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
21: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
22: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
23: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
24: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
25: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Indian fashion का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। You get men's and ladies' wedding suits and accessories, top quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. इतना ही नहीं, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware भी उपलब्ध है। For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Woolen Gabba, open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉक्स सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉक्स 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: आया क्या?
6: आएगा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435. याद रहे 0400-644-35 या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फ्लोर भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement. Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement. Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जी आयनो जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश बने हुए। इस बार अगला नाम नवाब साहब थे। नवाब साहब है सैफ अली खान। जी हाँ, सैफ अली खान नुना फिल्म क्या कहना है सैट से एक खतरनाक हादसे का सामना करना पिया। क्या कहना, फिल्म तो याद आ गई ना थोनू। बहुत ही सोहनी प्रीति जिंटा के नाल फिल्म है, बहुत ही प्यारी ते बहुत ही सोहनी स्टोरी भी हैगी है। खतरनाक हादसा होया सी उन्हां दे नाल। एक सीन विच उन्होंने बाइक चलानी सी, इस दौरान सैफ ने बाइक तो कंट्रोल खो दिता सी ते डिगदे डिगदे ओ वड्डे पत्थर दे नाल जा टकराया सी। उन्हां दा कुछ महीने तक कंटीन्यूअसली इलाज चलता रहा सी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस का की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ, ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करंज भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग्स।

टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जीनो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
13: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
3: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Indian fashion का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। You get men's and ladies' wedding suits and accessories, top quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. इतना ही नहीं, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware भी उपलब्ध है। For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Wollongabba. Open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Containers for change rahein, apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu assi bin coin kende haan. अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
8: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
5: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
7: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
6: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
7: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
5: Yaar, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
8: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मूड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your MT eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं, जिसे चाह कर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ।

हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

मधुबानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुँच कर भी जमीन से रखे। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी की ये प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरती के साथ बीते। आप सभी मोटिवेट रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे ताकि आस पास का वातावरण भी पॉजिटिव रहे और हमारा दिमाग भी पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव करे और साथ में हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। तो आइए जी, इसी के साथ हाथ जोड़ के भगवान को याद करते हुए अपने इस प्यारी सी सुबह को बिताते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत रेडियो ब्रिस्वानी में। आप सभी सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन को प्रोग्राम चांदनी के सफर में।

वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जी, आज हम अपने इस जानने के सफर को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं, कुछ किचन के हैक्स जानने वाले हैं जो हर एक लेडी हर एक जेंट्स को बहुत काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कॉकरोच से हर कोई परेशान हो जाता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, कॉकरोच कीड़े मकौड़े निकलते ही रहते हैं घर पर। और रात में अगर हम कुछ ऐसे रेमेडीज कुछ ऐसे से टिप्स अपनाते हैं और हम वो बनाकर करते हैं तो हमारे ये जो छोटे छोटे कॉकरोच हैं वो परेशान करना बंद कर सकते हैं। अब क्या है वो रेमेडीज, आज हम जानने वाले हैं कुछ किचन के हैक्स, उसको सुनने के लिए आप सभी बने रहिए मेरे साथ रेडियो प्रिस्वानी में।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसमें घर की रसोई में कॉकरोच की जो प्रॉब्लम होती है तेजी से बढ़ जाती है। छोटे छोटे जो कॉकरोच है किचन के कोने में, सिंक में, अलमारियों में छिपे रहते हैं और खाने पीने की चीजों में भी आ जाते हैं, जिससे कि खाना बर्बाद हो जाता है। इससे गंदगी तो फैलती है बल्कि कई बीमारियों का खतरा भी बन जाता है। तो कुछ हम ऐसे हैक्स जानेंगे जिससे कि ये समस्या खत्म हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा और चीनी के नुस्खे की। दोस्तों, कॉकरोच जो है मीठी चीजों की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जब चीनी में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो कॉकरोच इसे खा लेते हैं और बेकिंग सोडा उनके शरीर के अंदर रिएक्शन करता है, जिससे कि वे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यही वजह है कि ये घरेलू तरीका काफी इफेक्टिव होता है, बेकिंग सोडा और चीनी का नुस्खा। अब इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है वो सही तरीका होना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो प्रिस्वानी में। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खों को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें आपने बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी मिलानी है। आमतौर पर एक एक चम्मच मात्रा काफी होती है, लेकिन अगर घर में कॉकरोच ज्यादा है तो मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। चीनी की मिठास कॉकरोचों को अट्रैक्ट करती है, जबकि बेकिंग सोडा उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। दोनों को अच्छी तरह से मिलाना जरूरी है ताकि कॉकरोच आसानी से इस जो मिश्रण आपने बनाया इसकी ओर खींचे चले आए। अब ये उपाय आसान होने के साथ बेहद ही कम खर्च वाला भी माना जाता है, तो आप इसे हर जगह पे रख सकते हैं। अब आपने कहाँ पे रखना है इसको, जहाँ पे कॉकरोचेस ज्यादा आते हैं। तो जानेंगे और भी बहुत सारी बात कि किस तरह से आपने रखना है। आप जाने इस गीत के बाद, सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब जाने कि इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, कॉकरोच ज्यादातर रात के समय में आते हैं, खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं, इसीलिए इस घरेलू नुस्खे का जो इस्तेमाल है वो रात में करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। सोने से पहले आप किचन की सफाई करें और फिर ये जो मिश्रण आपने तैयार किया है उसको अलग अलग जगहों पर रख दें। रात भर में कॉकरोच इसे खा लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस उपाय को लगातार कुछ दिनों तक दोहराएं, एटलीस्ट 1 वीक आप करते रहें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही किचन में गंदगी और नमी ना रहने दें, ताकि कॉकरोच दोबारा ना पनपे। आप कोशिश करें कि सिंक वगैरह सब सूखा रहे, क्योंकि गीली जगहों पे जहां पे सलाब आ जाते हैं वहां पर ज्यादा कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं। अगर आप इस घरेलू नुस्खों को करेंगे, आजमाएंगे, तो आप खुद रिजल्ट देखेंगे 1 वीक के अंदर, तो मुझे जरूर बताइएगा। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी।

रेडियो प्रिस्वानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है जाने का सफर, आपकी अपनी दोस्त आरजे जाने जैन के साथ। तो आज हमने किचन के हैक्स जाने हैं, आशा करती हूँ ये हैक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे, चाहे इंडिया हो, चाहे फिर वो मेलबर्न हो, चाहे वो ब्रिस्बन हो, तो कहीं पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कोई आजकल कीड़ों से परेशान हो जाता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कीड़े चींटियां निकलती रहती है। अगर आप ये घरेलू उपाय करेंगे, रेमेडीज करेंगे, हैक्स को अपनाएंगे तो निजात पाएंगे। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में अपने दोस्त आरजे जाने जैन के साथ जाने के सफर में। और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने आम नागरिकों को थमाए हथियार। अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी धमकियों और संभावित अमेरिका इसराइल हमलों के डर के चलते तेहरान सरकार अपनी जनता को जमीनी हमले के लिए तैयार कर रही है। तेजी से खाली होते ऑयल रिजर्व पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया में कच्चे तेल के खत्म होने का खतरा तेजी से बढ़ा दिया है। 3 महीने पहले तक इसकी संभावना 0 मानी जा रही थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। होर्मुज स्ट्रेट लगभग पूरी तरह बंद होने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की भारी कमी का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान के बीच युद्ध के जल्द समाप्त होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहेगी। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में JF-17 और हजारों सैनिक किए तैनात। पाकिस्तान ने एक आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, लड़ाकू विमानों के स्क्वाडन और डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पाकिस्तान रियाद के साथ अपने सैन्य सहयोग को और बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी ओर वो ईरान युद्ध में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस तैनाती की पूरी जानकारी, जो कि पहली बार सामने आई है, इसकी पुष्टि 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने की है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। राजनाथ सिंह की वियतनाम दक्षिण कोरिया यात्रा, हिंद प्रशांत में सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत। वियतनाम और दक्षिण कोरिया की 18 से 21 मई तक 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान इन दोनों देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की मजबूती देने से लेकर सैन्य सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एजेंडा भी शामिल है। बढ़ रहा इबोला का प्रकोप, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा, भारत भी खतरे की लहर में शामिल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के प्रकोप को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब की गई जब कांगो और युगांडा में 300 से ज्यादा संदिग्ध मामलों में 88 मौतें सामने आई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में WHO ने बताया कि कांगो की राजधानी की एक लैब में पुष्ट करने वाला मामला सामने आया है। इससे इस बीमारी के और ज्यादा सभी देशों में फैलने की आशंका बढ़ गई है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार घट रहा। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत घटाने की अपील कर रही है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण भारत में घरेलू कच्चे तेल का लगातार घटता उत्पादन है। पिछले 1.5 दशक से भारत का स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन निरंतर गिरावट पर है, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता,
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर। बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता आपको भी
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन।
1: या नमस्ते,
2: यू हैव नॉट गॉन अंडर वाटर विद सो
1: मच रेन। वेल आई थॉट शायद थोड़ा कुछ देर हो जाएगा क्योंकि माय रोड द यूजुअल रोड दैट आई टेक, हाँ दोस्तों, आने के वक्त वहां पर मैंने साइन देखा, रोड क्लोज्ड, सो दिस इज ऑन बोहिल रोड। फिर वहां से घुमा कर गाड़ी इधर उधर ले जाकर फिर सीधे रास्ते पर आकर तो यहाँ पहुंचा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने सब कुछ तैयार कर दिया था आपने, लेकिन
2: लेकिन
1: यू डिडंट वांट टू स्टार्ट द प्रोग्राम, आई हैव टू स्टार्ट इट,
2: यू आर हियर ऑन टाइम।
1: ओके, तो चले दोस्तों, सबसे पहले हमारा ब्रिस्बेन का क्या फोरकास्ट है। आप जानते हैं बहुत भारी बारिश हुई है और आज भी संभावना है कुछ बारिश होगी, लेकिन कल से मौसम साफ होने लगेगा। कल आज 19 and 24 रहेगा, मिनिमम तो भूल जाओ, मैक्सिमम 24 रहेगा, पर 15 मिलीमीटर चांस ऑफ रेन। और कल के लिए 14 and 24 रहेगा, 1 मिलीमीटर। थर्सडे को मोस्टली सनी, 13 and 23, नो रेन। फ्राइडे को सनी, 14 and 24, नो रेन। सैटरडे को पार्टली क्लाउडी, 15 and 25, प्रॉब्ली 1 मिलीमीटर शायद बारिश हो। और संडे को पॉसिबल शावर्स कहा गया है, 17 and 25 रहेगा, 1 मिलीमीटर रेन। मंडे को पॉसिबल शावर्स और मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 16 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिस्बेन का वेदर। और रास्ते पर क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए अभी मेरे आने के वक्त, क्योंकि आई वॉज बिट लेट एंड द रोड वॉज बिजी, सो हेल स्ट्रीट पिट्री टेरेस क्रैच साउथ बाउंड जो हुआ था ये क्लियर हो गया है। और वेलिंगटन रोड कैंगरू पॉइंट सिग्नल फॉल्ट, नो ब्लॉकेज ऑल डायरेक्शन। बिनली रोड रनकॉर्न फ्लडिंग, बोथ डायरेक्शन इज ओपन, बोथ डायरेक्शन इज ओपन, क्विंसलैंड ट्रैफिक, ओके व्हाटएवर। और हेल स्ट्रीट पिट्री टेरेस मल्टी व्हीकल क्रैश, अच्छा है तो मैंने बता दिया, खत्म हो गया। खैर चलो गीत सुनते हैं दोस्तों, फिर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं जल्दी से फिजी न्यूज पढ़ दूं। हाँ, देखिए, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अयाज सैयद कयूम एंड फॉर्मर इलेक्शन सुपरवाइजर मोहम्मद सलमीन आर फेसिंग अ मेजर कोर्ट जजमेंट टुडे रिलेटेड टू टैक्स एंड गवर्नेंस एलिगेशंस। अच्छा, रेजिडेंट्स इन सिंगाटोका आर फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर रिपीटेड वाटर कट्स लास्टिंग अबाउट 11 डेज इन सम एरियाज, विद मेनी डिमांडिंग आंसर्स फ्रॉम द वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी। Fiji's military commander publicly admitted the army was at fault in the custody death of a suspected drug figure, Jone Vakarasi, or increasing pressures for accountability. Okay, a pistol magazine with 11 live rounds was reportedly discovered in Makoi, according to the Republic of Fiji military forces. Fiji National University announced that 991 women graduated during its latest graduation ceremonies, highlighting increasing female participation in higher education. It's getting old world over like that now, you know that. A new restaurant and entertainment venue called The Ovals is preparing to open in Pacific Harbor, and is already getting attention in Fiji business news. Okay. Australia and Fiji are continuing negotiations on a strong security and economic partnership known as the Vuvale Union. A moderate earthquake was recorded south of the Fiji Islands yesterday, though no major damage has been reported. Okay. Villagers in Savu Savu managed to stop a house fire themselves using buckets of water before firefighters arrived, always the case. Well, of course, you know, preventing the blaze from spreading.
2: Yep.
1: Okay. Debate continues over a proposed waste to energy plant near Woonda Point, with critics warning about environmental and tourism impact. Okay. चलो ये था फिजी का समाचार. एक गाना सुनते हैं फिर वापस आएंगे. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों. नंबर है 04300031701.

मर कहते कहते हुआ दीवाना, अरे आत्म मेरी झांक के देखो जाने जाना, कौन तुम्हारा अपना है और कौन बेगाना।

0: ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर

चाहते हैं कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट

0: पे भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: दोस्तों आज का जो गाना है अच्छा देखो, आंखों की एक छोटी सी अदा और इशारे की बात करता है। अगर वो इशारा ना होता तो शायद दिल भी यूं दीवाना ना होता। बताइए कौन सा गीत है? लो फिर ले आए।
6: आई
5: नो बस बी सेइंग अगेन ही स्टार्टेड
6: हिज नॉनसेंस अगेन सो लेट इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्ली।
5: अरे याद तो किया ना।
6: I guess.
5: आज का गाना आंखों की एक छोटी सी अदा और इशारे की बात करता है। अगर वो इशारा ना होता तो शायद दिल भी यूं दीवाना ना होता। दोस्तों विनी मस्ट बी सेइंग ओह नॉट अगेन बिकॉज़ शी ट्राइड वेरी हार्ड लास्ट
6: यस्टरडे।
5: बट एनीवे, बताइए कौन सा गीत है दोस्तों? चलो थोड़ी देर में बजा देंगे आपके लिए। देखो, she said something already.
6: Okay.
5: Oh.
6: Let's see.

0: आंखों की एक छोटी सी अदा और इशारे की बात करता है। अगर वो इशारा ना होता तो शायद दिल भी यूं दीवाना ना होता। बताइए, ठीक है, देर से आए लेकिन आए हैं हम जरूर।
1: और okay, unfortunately, hang on. Yeah. Vinny, your answer was incorrect.
0: Yeah. And Prema ji, your answer was incorrect too. लेकिन चलो एक बहुत प्यारा सा गीत आपने रिक्वेस्ट किया है प्रेमा जी। चलो हम सब एक गीत को बहुत पसंद करते हैं। We love this song. खोया खोया चांद खुला आसमान।

0: ओके चलिए इस समय 14 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, राइट?
1: यप।
0: ओके, बहुत प्यारा गीत था, थैंक यू वेरी मच। जब आप लोग ऐसे रिक्वेस्ट कर देते हैं तो
1: स्पेशली द ब्यूटीफुल
0: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं और शेल वी प्ले द सॉन्ग नाउ?
1: Let me play one song.
0: Okay. फिर से मैं पूछ लूँ?
1: Yeah, okay.
0: अच्छा, आज का जो गाना है दोस्तों, आप बताइए, आंखों की एक छोटी सी अदा और इशारे की बात करता है, अगर वो इशारा ना होता तो शायद दिल भी यूं दीवाना ना होता। ना आंख आंख से बात कर लेते हैं ना।
1: That's so true.
0: Okay.
1: Okay.

0: शादी हो जाने दे.
1: ओके.
0: आंखों की एक छोटी सी अदा और इशारे की बात करता है. अगर वो इशारा ना होता तो शायद दिल भी यूं दीवाना ना होता. कोकिला, यू केम वेरी क्लोज बट आप सेकंड लाइन भूल गए आप. ठीक है, ओके. लेकिन चलो, समय बहुत नहीं है. कौन सा गीत है दोस्तों, अभी आप सुनेंगे तो कहेंगे यार आई शुड हैव नोन ऑल दैट. जी हाँ.

0: So, what did you think?
1: Lovely song.
0: तो दोस्तों खुश रहिए, जाने का वक्त हो गया है, सेहत का ख्याल रखिए और मुस्कुराना मत भूलिए, ठीक है? पैसा कमाए जरूर, कमाना तो जरूरी है, लेकिन दोस्तों का ना भूले। देखिए दोस्तों, एक ऐसा चीज है दोस्तों जिसको पालना पड़ता है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट।
1: ऑफ कोर्स,
0: जब हम कभी बहुत ज्यादा किसी चीज में हो जाते, बाद में रियलाइज करते यार कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन रहेंगे कैसे जब अपना समय नहीं दे सकते आप, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है और इसी दोस्ती को हम कायम रखेंगे। दोस्तों आप भी दोस्त है हमारे, हमेशा आ जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और कल मिलते हैं फिर, कल है बुधवार, ठीक है? समय हो गया है, सो चले कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हैव अ लवली लवली डे।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: अच्छा।

रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ। नमस्कार है जी, मैंने कहा राम राम। कैसे हैं? अच्छे तो है ना? जिंदगी में सब कुछ मस्त बढ़िया एकदम चकाचक। हाँ देखिए, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जिंदगी में सब एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम मजेदार हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह जाती है तो जिंदगी है बॉस, चलती रहती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, इसी का नाम तो जिंदगी है ना। तो चलिए जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं लव यू जिंदगी। जिंदगी को लव यू कहने का अपना ही मजा है। इसकी सारी तकलीफें कम लगने लगती हैं और इसको जीने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है। तो मेरे पास तो मेरे साथ एक बार कह के देखिए लव यू जिंदगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रेडियो ब्रसवानी पर इस वक्त मैं हूँ, मैं यानी सताक्षी हूँ आपके साथ और लेकर आई हूँ एक बार फिर से आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातों का ये सफर आज भी सताक्षी आपके साथ सेलिब्रेट करने वाली है और आज की सुबह को आपके साथ जीने वाली है। तो चलिए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। Keep listening to Radio Braswani, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और इसके पहले के सफर में आगे बढ़े विश करते हैं उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है, बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त है, यानी जिनका आज हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो बर्थडे बेबीज आज जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और चकते फट्टे आज तो मतलब किसी से बात मत कीजिएगा, अगर कोई आपको विश ना करे तो आज आप भी पलट के फोन मत कीजिएगा। भाई दिन है आपका और ये दिन रोज रोज थोड़ी ना आता है, इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो सेलिब्रेट कीजिए इसे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, और वो भी इसलिए क्योंकि आज जो सात फेरों का बंधन था वो बंधा था उनकी जिंदगी में, तो आपको शादी की सालगिरह यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर आप दोनों साथ चलते रहें, दुआ है हमारी। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि उन्हें है आज के दिन से कुछ उम्मीदें, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट, आज आपके जो भी सपने हैं वो मुकम्मल हो, पूरे हों। इसी विश के साथ आप सबको डेडिकेट करते हैं ये अगला ट्रैक, कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वेलकम बैक, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो मिर्सानी 1701 एम पर। और इट हैपेंस में आज एक बार फिर से आपके साथ आपकी मॉर्निंग वाइब्स को सताक्षी आपके साथ शेयर कर रही है। सो कैसे बीत रही है मॉर्निंग्स, कैसा गुजर रहा है दिन? देखिए, दिन कैसा गुजर रहा है मतलब ये नहीं है कि भाई आधा दिन गुजर चुका है। मैं पता है अभी दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन गुजरना तो शुरू हो गया है ना। और ये 24 आवर्स जो है, जो आज के दिन के हमें मिले हैं, ये ऐसे पल पल करके गुजर जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल भी बड़ा दिन नहीं है। देखते देखते दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। तो बस कामों में लग जाइए, वो गोल्स जो आज आपको अचीव करने हैं उनकी ओर अगला कदम बढ़ाइए, ठीक है जी? क्योंकि पल पल करके ये वक्त कब गुजर जाएगा, पूरा दिन गुजर जाएगा, रात हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि कल से देखेंगे। ऐसा मत कीजिए, और जो कुछ करना है, जो प्लानिंग्स हैं, उनको आज ही एक्सिक्यूट करना है, ठीक है जी? आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस। और मॉर्निंग ट्रैक की बात हुई है तो ये गाना तो बनता है।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: इट हैपेंस। जी हाँ, इसी सफर को आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कहते हैं कि बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, अपने मन के अंदर शांति रहनी बहुत जरूरी है। बाहर का शोर हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने लगा है, और आज का वक्त तो यार वो वक्त आ गया है, कभी हंटा वायरस, कभी ईरान इराक अमेरिका, कभी रूस और यूक्रेन, मतलब ऐसा लगता है कि अब बस करो, है ना, थक से गए हैं हम। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर रुका था तो शायद ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, अब थोड़ा शायद शांति हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तो भाई और सारे युद्ध भड़क उठे, और अब तो लग रहा है कि भाई देखा जाए तो प्री थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये जो कंडीशन है ये बन रही है, बन गई है इनफैक्ट कहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जब इतना बुरा हाल है, पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो कितना हाई हो चुका है हम जानते ही हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो जितना शोर भी बाहर है ऊपर से हमारे काम का प्रेशर, यस ठीक है जी, तो बहुत जरूरी है कि अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखा जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ बाहर बिगड़ा हुआ है, कम से कम अंदर तो शांति बनी रहे, है ना। और बस यही दुआ है कि ये शांति जो है डिस्टर्ब ना हो। और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: गानों की हैट्रिक, गानों की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो बृसवानी पर। दोस्तों, आपके साथ है सताक्षी, और इट हैपेंस में हम बहुत सारी बातें आगे जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल गानों की हैट्रिक के साथ बढ़ते हैं हमारी

गानों की हैट्रिक। जी हाँ, गानों की हैट्रिक ही इस वक्त आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक इस लास्ट ट्रैक के साथ, और इसके उस पार फिर से होंगी आपके साथ जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हैपन्स, इसी सफर को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपन्स में आपके साथ सताक्षी कर रही है कुछ मॉर्निंग की बहुत ही बढ़िया वाली बातें। यार जिंदगी ना बहुत सारे लोग यादों में गुजार देते हैं, और यादों का मतलब होता है रो रो कर गुजार देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग बिना मतलब के ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन बनते हैं। मतलब दिलीप कुमार और मीना कुमारी बनने का क्या मतलब है? देखिए, दिलीप कुमार और मीना कुमारी ट्रेजेडी किंग या क्वीन इसलिए कराए क्योंकि भाई उन्हें उसके लिए पेमेंट मिलता था। अच्छी फिल्में करते थे, वो रोते थे तो ऑडियंस रोती थी और उन्हें बढ़िया पेमेंट मिलती थी। लेकिन हम और आप क्यों रो रहे हैं? मतलब हम में से बहुत सारे लोग किसी की यादों में क्यों रो रहे हैं? जिंदगी मुझे लगता है ऊपर वाले ने इसलिए तो नहीं दी होगी कि आपसे कहो जाओ तुम जाकर इसकी यादों में रो। नहीं, आपको जिंदगी इसलिए दी गई है क्योंकि आपके इस दुनिया में आने का कोई मकसद होगा। आपको जिंदगी इसलिए दी गई है कि आप देख पाए कि इंसान की जिंदगी कैसी होती है। हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, दर्द हो तो दर्द कह सकता है। और कोई है जो अपने मुंह से कह पाए इस दुनिया में कि मुझे दर्द है कहीं या मैं बहुत खुश हूं? नहीं, वो फीलिंग जो है, वो इमोशंस जो है, सबसे स्ट्रांग हम इंसानों के पास में है। और हम रोकर धोकर किसी की यादों में आंसू बहाकर उसे जाया कर देते हैं। नॉट गुड यार, सोचिए मेरी बात को और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। फिलहाल ये अगला ट्रैक आपके लिए है और मेरी आपके साथ बातें इस गाने के उस पार होंगी।

मिठापन से एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रिस्वानी पर। जी हाँ, कहते हैं कि आपके थॉट आपके रियलिटी को शेप देते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि अपने दिन को पॉजिटिव इंटेंशन के साथ शुरू कीजिए। ये नहीं कि कल इतना बुरा था, आज तो उससे भी बुरा होगा। मतलब पहला जो नेगेटिव थॉट है वो दिमाग में यही आता है कि आज तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, आज क्या खाक अच्छा हो जाएगा। तो भाई ये जो बार बार रटते रहते हैं ना कि क्या खाक अच्छा हो जाएगा, यही चीज़ें हैं जो आपके रियलिटी को शेप दे रही हैं, है ना। तो अगर वाकई लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं तो रियलिटी चेंज कीजिए, अपने अफर्मेशंस चेंज कीजिए खुद के लिए, अपनी बातें जो आप कहते हैं या सोचते हैं, अपना थॉट प्रोसेस, अपना इंटेंशन चेंज कीजिए, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी. To everyone tuning into